0: ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਬਰ ਲਿਫਟ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਕੰਮ ਚ, ਸਟੀਲਸ ਐਂਡ ਮੈਲਨੀ, ਰੋਇਲ ਆਟੋ ਸੈਂਟਰ ਐਂਡ ਅਮਿਸ਼ਨ ਟੈਸਟਿੰਗ, 905-798-1478-905-799-1478-1478-1499-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1
1: ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਪੋਂਸਰਸ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਅਜੇ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ 905-673-3337 ਰੋਇਲ ਪਰਫਿਊਮਸ ਵਾਲੇ ਰੀਗਲ ਰੋਡ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਇੰਨੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੈਂਡ ਨੇਮ ਪਰਫਿਊਮਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਫਰੈਗਰੈਂਸਿਸ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਗਿਫਟ ਆਈਟਮਸ ਨੰਬਰ 1 ਮਿਲਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਇਲ ਪਰਫਿਊਮਸ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 437-316-0701 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 437-316-0701 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਲਦੀ ਕੜੀ ਮਿਸਟਰ ਸਾਰੰਸ਼ ਨਾਗਪਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਨ ਦਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਮਿਸਟਰ ਸਾਰੰਸ਼ ਨਾਗਪਾਲ ਜੀ ਵੈਲਕਮ
2: ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ
1: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ
2: ਐਂਡ ਦੈਨ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਆਪ ਇਸ ਅੱਜ ਸ਼ੋਅ ਹੋਸਟ ਕਰੇ ਸਤਿੰਦਰ ਜੀ
1: ਬਿਲਕੁਲ
2: ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਂਡ ਦੈਨ ਲਾਈਕ ਆਪ ਓਨਟਾਰੀਓ ਮੇਂ ਕਹੀਂ ਵੀ ਰਹਿਤੇ ਹੈ ਆਪ ਲਾਈਕ ਆਪਕਾ आप या तो पहले कोर्स कर चुके हैं गवर्नमेंट सपोर्टेड प्रोग्राम्स में सेकंड कोर्स आप करना चाहते हैं जिसमें आपको लाइक ज्यादा बेनिफिट हो आपको लाइक 50,000 से 1,70,000 का लोन मिल सकता है 0% पे ऑन वन हैंड आप स्किल डेवलप कर रहे हैं बिजनेस के आसान कोर्सेज फुली ऑनलाइन कर रहे हैं जिसमें एग्जाम्स नहीं है इजी असाइनमेंट्स हैं दूसरी तरफ आपको आपके खाते में गवर्नमेंट से 50,000 से 1,70,000 का लोन मिलता है बिना क्रेडिट चेक के आपका स्कोर जीरो भी है तो भी आप एलिजिबल है और लाइक विद इन 30 to 90 days आपके खाते में फंडिंग गवर्नमेंट से आ जाती है और कोई एज लिमिट नहीं है कोई अगर आप पेंशन पे आप तब भी एलिजिबल है और बाकी लाइक अगर 2 साल का कोर्स है फैमिली ऑफ 4 है हस्बैंड वाइफ दोनों पढ़ते हैं आसान से कोर्स कर रहे हैं फोन पे क्लासेस लगाओ चाहे लैपटॉप पे लगाओ 3 घंटे मंडे टू फ्राइडे दैट्स इट तो उनको $1.5 lakh आता है लोन के उसमें एंड देन अगर फैमिली ऑफ 5 आपके बच्चे ज्यादा है तो आपको $1,70,000 तक का लोन आता है अगर आपके बच्चों की उम्र 11 साल से कम है तो आपकी फीस ऊपर से ही गवर्नमेंट कवर कर देती कॉलेज की तो आपके पास 1.5 lakh आया या 2 lakh आया आपने उतना ही वापस करना है 0% पे है लोन कहीं नहीं मिलता धरती पे भी नहीं मिलता 0% पे लोन कहीं भी आप इसे यूज कर सकते हैं ग्रोसरी करें इन्वेस्ट करें बैक होम भेजे कुछ भी करें 2 साल के बाद पहली किस्त स्टार्ट है 2 साल तक 0% 2.5 साल बाद 2.5% ब्याज है पूरे साल का मतलब $1,00,000 पे सिर्फ $2,500 साल का ब्याज है 15 साल की आसान किस्त में आप इसे लौटा सकते हैं बाकी लाइक गाड़ी के लोन पे गाड़ी उठा लेते हैं घर के लोन पे घर उठा लेते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट आपको लोन दे रही है बैंक नहीं दे रहा और गवर्नमेंट आपकी किताबें नहीं उठाएगी डोंट वरी कोई गारंटी नहीं है इस लोन में आपके खाते में डायरेक्ट आता है इससे बढ़िया लोन एग्जिस्ट ही नहीं करता धरती पे
1: क्या बात
2: बड़ी इंपॉर्टेंट बात हमारी फीस कितनी है कोई झोल नहीं है कोई मोल नहीं है फ्लैट फीस है $199 काम होने के बाद लास्ट वीक अराउंड 32 बंदों की फंडिंग आई है उनके खाते में डायरेक्ट क्लाइंट्स के देन उन्होंने हमारी फीस दी है छोटी सी कितनी $200 कोई कमीशन नहीं है कोई परसेंटेज कोई कारीगरी नहीं है साफ काम साफ तरीके से 8 साल से कर रहे हैं बहुतों को असिस्ट कर चुके हैं और लाइक अगर आप सेकंड कोर्स करना चाहते हैं पहले इस चीज से फेमिलियर है तो आप हमारे पास हमें जरूर कॉल करें आपको सारा प्रोसेस पता ही होता है क्या है सबसे कम फीस है कॉलेज की नंबर 1 और इजी है नो एग्जाम्स और हमारी फीस कोई वो नहीं है मतलब सेटिंग नहीं है साफ फीस है हमारी साफ आपको पता ही है बात जो लोग कर चुके हैं नंबर 437-264-31-75 437-264-31-75 437-264-31-75 हर एंटारी डायरी से प्रॉपर ऑफिस है 8 साल में एंड देन कॉल होने करो 437-264-31-75 437-264-31-75
1: थैंक यू सर ऑल द बेस्ट नंबर एक बार फिर 437-264-31-75 थैंक यू सारंश सो नाइस ऑफ यू प्रोग्राम पंजाबी लेना प्रोग्राम च

0: उड़ान ते अपने बिजनेस नु करो प्रमोट। आज ही अपनी एडवरटाइजमेंट बुक करने लिए कॉल करो प्रभ संधु होरा नु 4378700001 4378700001। ओहो सर्दी च हीट नहीं चलदी ते गर्मी च एसी।
1: ले आपा हुणे करदे आ संधू साहब नाल गल ते करदे आ मसले दा हल।
0: एसी फर्नेस गैस लाइन वाटर हीटर या ह्यूमिडिफायर सर्विस या इंस्टॉलेशन नव एयर कंफर्ट ते जितेंद्र संधू नु कॉल लाओ ते लाइफ च कंफर्ट पाओ। कॉल 6477066640
1: 6477066640।

ब्यूटी इंडस्ट्री थी दुनिया में अपना करियर बनाने बारे सोच रहे हो तो हो जाओ टेंशन फ्री। अमायरा एकेडमी हेयर एंड एस्थेटिक्स तो हाडे ऐसे करियर ते ड्रीम्स नु दिखाउन के सही रहा जो प्रोवाइड करते हैं सब तो बेहतरीन ते कंप्लीट कोर्स पैकेज पूरे कैनेडा विच। हेयर स्टाइलिंग डिप्लोमा, मेडिकल एस्थेटिक डिप्लोमा, ये सब दे नाल नाल अमायरा एकेडमी अपने यूनिक ते सुपर सैटिस्फाइंग हेयर सर्विसेज एंड स्पा ले वी जाने जाते हैं। हुणे कॉल करो 9053996110 ते और विजिट 114 कैनेडी रोड यूनिट 2 ब्रैम्पटन ओंटारियो। ब्रैम्पटन विच जे तुसी लभ रहे हो बेस्ट क्वालिटी ते इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स ता फिर तुहाडी टेंशन हुन छूमंतर हो जावेगी। आओ ब्रैम्पटन कैश एंड कैरी ते जिथे मिलदे ने फ्रेश वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, स्नैक्स, ग्रोसरीज ते किचन आइटम्स सब इको थां ते एंड माइंड ब्लोइंग वैरायटी नाल तुहानू लगो शॉपिंग दा मजा असली पंजाब वर्गा। याद रखो 100 कैनेडी रोड साउथ ब्रैम्पटन या फिर कॉन्टेक्ट कर सकते हो 9052304800 ते या ईमेल करो brampton cashandcarry2023@gmail.com ते। स्वाद दे मामले विच कॉम्प्रोमाइज कदे भी नहीं करना चाहिदा, इसे ले तो हाडे लई है विलेज ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट एंड स्वीट्स। 1999 तो लेके ब्रैम्पटन नू सर्व कर रहे हन विलेज ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट एंड स्वीट्स। लुत्फ उठाओ स्वादिष्ट पंजाबी खाने दा, बुफे, डाइनिंग, टेक आउट, केटरिंग, लंच दे डिनर सारा कुछ है। स्वीट्स दे स्नैक्स दी वड्डी कलेक्शन भी है जो की तुहानू जरूर पसंद आएगी। ते फिर देर किस गल दी, अज ही कॉल करो 905-450-3333 ते एड्रेस विलेज ऑफ इंडिया 114 कैनेडी रोड साउथ Brampton।

0: पंजाबी लहरां
1: प्रोग्राम समर्पित है रंगले पंजाब नूं
0: पंजाबी बोली ते पंजाबी सभ्याचार नूं
1: गुरु साहिबान पीरां फकीरां दी धरती नूं
0: ठंडियां छावां जीआं मावां नूं
1: चौड़ियां छातियां वाले गभरूआं नूं
0: चरखा कतदियां ते पींगां झूटदियां मुटियारां नूं
1: लोक गीतां भंगड़े अते गिद्धियां दीआं छणकारां नूं
0: प्रोग्राम पंजाबी लहरां
1: हफ्ते दे सत्ते दिन प्राइम टाइम ते पंजाबी लहरां पंजाबीयत दी सेवा विच
2: The views and opinions of the guests and sponsors are solely theirs and not that of the

0: Friday, September 18, 7 PM at the Living Arts Center, Mississauga.
1: पहला आया सी बड़ी मोहब्बत दी थी, उम्मीद कर रहा इस बार भी तुसी आशीर्वाद दोगे.
2: वे आ जा तो मैं नाल नचिए नचिए बाहा च बाहा पा.
0: For tickets, visit Ticketmaster. For information, call Singh Harjeet at 647-448-1000.
3: अगर तुसी घर दे मालक हो तां ध्यान नाल सुनो. जे थोड़ी प्लम्बिंग नू कोई हाथ ला रहा, चेक करो. लाइसेंस ने, इंश्योर्ड ने, WSIB कवर्ड ने. प्लम्बिंग कोई मजाक नहीं. एक रॉन्ग फिटिंग, एक लूस लाइन ते मिंटा विच फ्लड, वाटर डैमेज, मोल्ड वर्गियां चीजां हो सकदियां ने. जेसीज प्लम्बिंग लाइसेंस्ड मास्टर प्लम्बर्स, फुली इंश्योर्ड अते WSIB कवर्ड ने. कोई भी लीक्स, फॉसेट्स, टॉयलेट्स, कोई हॉट वाटर नहीं आ रहा, ब्लॉक्ड ड्रेन्स ने. रेजिडेंशियल या कमर्शियल, फास्ट, क्लीन, ऑनेस्ट अते प्रोफेशनल सर्विस. जेसीज प्लम्बिंग 647-969-1298 647-969-1298 जेसीज प्लम्बिंग.
4: GS होम इंप्रूवमेंट वालों एक वेरी गुड न्यूज. हुण तुसीं उहनां कोलों वेरी वेरी बेस्ट बीम सेंट्रल वैक्यूम सिस्टम भी लै सकदे हो. सेंट्रल वैक्यूम $500 तों शुरू हुंदे ने. गराज डोर ओपनर लिफ्ट मास्टर दे $350 तों. फुल गराज डोर्स $349.99 तों. पिछले 30 सालां तों तुहाडी सेवा विच GS होम इंप्रूवमेंट. एक्स्ट्रा स्पेशल ऑन बिडे सिस्टम. बेस्ट सर्विस, बेस्ट प्राइस. 9057890333 1098 रॉबर्टसन एट टोरबन क्रोल बाग प्लाजा 905-799-0333.
3: पंजाबी लहरा या चलो AM 530 नू दुनिया दे किसे भी कोने दे विच सुनन दे लई अज ही डाउनलोड करो पंजाबी लहरा दी एप अपने एप्पल या एंड्रॉइड फोन ते. PUNJABILEHRAN पंजाबी लहरा दी एप अज ही डाउनलोड करो.
5: मॉर्गेज दे वधिया रेट चाहुंदे हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड मॉर्गेज दी भाल विच हो, तुहानू एक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट रीफाइनेंसिंग एक्सपर्ट सलाह छेती बनू काम. कॉल मुनीश तेजी एट 4163173487 टुडे. योर जॉब इज डन. मुनीश तेजी 416-317-3487. ब्रोकरेज लाइसेंस 10039.
6: ओ रोकी, तू अपनी इंश्योरेंस किस तो करवांदा यार?

0: multiple locations in GTA. For more information, visit rajdhanisweets.ca.
1: कार वैन ट्रक दा कम होवे ता याद रखो रॉयल ऑटो सेंटर रिलायबल अफोर्डेबल अते ऑनेस्ट सर्विस जिथे कि मैं भी गड्डियां नु लेके जाना रिपेयर दे लई रॉयल ऑटो सेंटर टेस्ला दे व्हीकल्स ते भी कम करदे आ कोई भी रिपेयर किसी भी मेक एंड मॉडल सेफ्टी सर्टिफिकेशन उबर लिफ्ट दी सेफ्टी करोनी है स्पेशलाइज करदे ने इलेक्ट्रिकल अते कंप्यूटराइज्ड डायग्नोस्टिक कम च स्टील्स एंड मेलनी रॉयल ऑटो सेंटर एंड एमिशन टेस्टिंग 905-799-1478-905-799-1478-1498 रॉयल ऑटो सेंटर
2: डाइवोर्स या कस्टडी दी लड़ाई जिंदगी दी सब तो औखी लड़ाई हुंदी है क्योंकि तुसी उस शख्स नाल लड़ रहे हुंदे हो जिस नाल तुहाडा घर परिवार ते तुहाडे बच्चे सांझे ने उस वक्त कई सवाल उठदे ने कि प्रॉपर्टी किस कोल जाएगी कस्टडी किस नूं मिलेगी ते जिंदगी दी सब तो प्यारी दौलत बच्चे किस कोल रहणगे
3: S&S Lawyers को इन्ना सारे सवालां दे जवाब ते तुहाडे हक ले लड़न वास्ते लियाकत है अपने हक जानन ले या सलाह लैण ले आज ही S&S Lawyers नूं कॉल करो 416-655-2000
1: 24 घंटे 7 दिन खुला सब्जी मार्केट रेस्टोरेंट एंड ग्रोसरी स्टोर दो लोकेशंस तो सर्व कर रहे ने सैंडलवुड एंड मैकलॉगलिन 10 लोरमेल गेट यहां पहुंचो 10970 ब्रैमली रोड वेज एंड नॉन वेज बिरयानी बाय वन गेट वन फ्री चना पटूरा बाय वन गेट वन फ्री फिश पकौड़ा बाय वन गेट वन फ्री तंदूरी चिकन लेग बाय वन गेट वन फ्री मैंगो लस्सी सॉल्ट लस्सी मिठी लस्सी बाय वन गेट वन फ्री हर रोज फ्रेश साग ते मक्की दी रोटी टिफिन सर्विस पिकअप अते डिलीवरी दे लई वी अवेलेबल है दोनों लोकेशंस ते फ्रेश सब्जियां फ्रूट ते ग्रोसरी दे आइटम ते हुण आलू गोभी मूली ते प्याज आले परौंठे 299 दे विच अमृतसरी कुलचा विथ चना 799 ते पनीर एंड मिक्स परौंठा 399 सब्जी मार्केट ओपन 24/7 SS Lawn Care ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਚੋਇਸ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਘਾਹ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸੌਡ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸੀਜ਼ਨਲ ਗ੍ਰਾਸ ਕਟਿੰਗ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਵੀਡ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਾਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਫਲਾਵਰ ਬੈਡ ਬਣਵਾਓ ਜਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀ ਟ੍ਰਿਮਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਚਾਹੇ ਹੋਵੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ 437-655-1984 437-655-1984
4: ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਰਾਂ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਪੈਸੇ

0: करने के लिए आपको opticall.ca में चाहिए। आंखों को चेक करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 905-400 का एंटीटी पर कॉल कीजिए 9054567333। अल्फा ऑप्टिकल, योर विजन इज योर बिजनेस।
1: Since I've not seen you, it's 9
2: We didn't have good news here. When COVID happened, the doors got locked. Everyone had a rock box.
3: You can now make things in your backyard that you couldn't get.
1: Of Broad Adopt Samosa and Sweet Factory at all leading grocery stores.

कर हारियो अनेकों पाती छोड़े कदमु नाही एक बात सुनता की होता साध संग मिट जाही कर कृपा संत मिले मोहे तिनते धीरज पाया संति मंत दियो मोहे निर्भव गुर का सब कमाया जी

संसार अपने जिए जंत आपे राखी जमहे की ओ हटतार हर के चरण हृदय और तार सदा सदा प्रभ सिमरी है पाई दुख किल बिख काटन हार रहा तिसकी सनी उपर पाई जिन रचिया सब कोई करण कारण समरथ सो पाई सच्चे सच्ची सोए नानक प्रभु त्याई है पाई मन तन शीतल होए और वाला पंजवा संत हो हर हर नाम त्याई सुख सागर प्रभु विसरो नाही मन चिंदियड़ा फल पाई रहाओ सतगुर पूरा नाम गवाया

0: घर रक्षाबंधन के पावन अवसर को बनाए और भी ज्यादा स्टाइलिश। खरीदिए जीटीए में कहीं और न मिलने वाली बेहद खूबसूरत राखियाँ इंडिया सजावट एंड पूजा हट से, और आपके घर की सजावट के लिए भी बहुत कुछ मिलेगा ओनली एट इंडिया सजावट एंड पूजा हट। 31 मेलनी ड्राइव, यूनिट 5, ब्रैम्पटन, 9054586808।
1: सूर्य कवच
2: श्री आदित्यवचसमुद्रमहामुद्रस्यस्तिवान्ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः यो देवता घृतं सूतुं शक्तिः आदित्यं कीलकं महादित्यरसा सिद्ध्यते सूत्रमन्त्रं जपे विनियोगः गृणिः पातु शिरो देशं सूर्यः पातु ललाटकम् आदित्यो लोचने पातु श्रुतिं पातु दिवाकरः घ्राणं पातु सदा पानुः मुखं पातु सदा रविः जिह्वां पातु जगन्नेत्रः कण्ठं पातु विभावसुः स्कन्धौ ग्रहवतिः पातु

नाभिं पातु नभो मणिः द्वादशात्मा कटिं पातु सविता पातु सक्तिनी ऊरु पातु सुरश्रेष्ठो जानुनी पातु भास्करः जङ्घे मे पातु मार्तांडो गुल्फौ पातु दिशां पतिः पादौ पातु दिलमणिः पातु मित्रोऽखिलं वपुः आदित्यकवचं पुण्यं बभेद्य वच्छ सन्निभम् सर्वरोगभयादिभ्यो मुच्यते नात्र संशयः।

का धर्मसार में बहुत ही प्यारा सा स्वागत है, अभिनंदन है सभी को, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, या अली मदद। अब आपके लिए का त्योहार आने वाला है, अगस्त 27 को पूर्णिमा है, तो सब पहले तो अपना इंडिया का इंडिपेंडेंस डे है अगस्त 15। आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो दिल्ली में आज तो शनिवार का दिन था, तो बहुत ही बढ़िया उन्होंने सेलिब्रेशन किया, और आपके लिए, आपको सभी को हमारे इस इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत बधाई सभी को। तो अब अगर आप अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर बढ़िया लेके आना चाहते हो, बढ़िया आपको बैग यार्ड में बाजू की चाहिए, किचन में गैजेट्स बढ़िया सी चाहिए, तो आपको जाना होगा, जी हाँ आपको जाना होगा टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इस मॉडल पर रोड पर मौजूद है, दूसरी लोकेशन उनकी गोल्फ में है। तो आप सभी को हमारे जितने स्पॉन्सर हैं इंडिपेंडेंस डे की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं, तो उनका जो दूसरी लोकेशन गोल्फ में, आप उनके स्पेशल राखी स्पेशल देखने के लिए आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम पर जाइए, और फिर अपने ऑर्डर बुक करने के लिए 905-7009-0045 पर कॉल कीजिए, 905-799-0045। आप उनको टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स को कॉल कीजिएगा, अपनी बहन को अगर बढ़िया सा गिफ्ट लेके देना चाहते हो राखी के लिए, तो आप अभी से ऑर्डर अपने बुक कर लीजिए। और अब अगर आपने मूव होना है, तो मूविंग के लिए एच के मूवर्स आपको कनाडा भर में मूव होने में मदद करते हैं, और उनका आप नंबर लिख लीजिए 416-524-7004 416-524-6704 पे आप एच के मूवर्स को कॉल कर लीजिए, और आपके सामान को बड़े हिफाजत से पहुंचाते हैं एच के मूवर्स। और आपने अगर आप लंदन में रहते हैं, आसपास के इलाके में रहते हैं, आपके लिए बड़ी खुशी की खबर है कि मास्टर कुरियर डिपो अब आपके लिए वो रोड पर मौजूद है, आपकी कार वैन ट्रक को एकदम नए जैसा बना देते हैं। तो आप मास्टर कुरियर डिपो .com पर जाकर आप उनके बारे में और जानकारियाँ ले सकते हैं। अब अगर आपने ट्रक रिपेयर करवाना है, तो बेस्ट ट्रक रिपेयर एंड टायर सेंटर आपके लिए 1715 मिसिसागा में मौजूद है, और जानकारी के लिए आप उनको 905-625-0055 पर कॉल कर सकते हो, 905-625-0055 पर आप उनको कॉल कर सकते हैं, बेस्ट ट्रक रिपेयर एंड टायर सेंटर वालों को।

0: समोसा एंड स्वीट एक्टरी जिथे भाजी दिया सारिया आइटमा डॉलर 475 पर पाउंड पर शुरू ने बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट डॉलर 5 पर पाउंड तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्गिन रोड ईटोबीको वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1135
1: जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर से सामने।

काली पीरो की यहाँ भोली चकले हीरो की यहाँ गाते हैं रांझे यहाँ गाते हैं रांझे मस्ती में मस्ती है धूम में मस्ती में।

0: सारे फूलों की राहों में सारे फूलों की सावन यहाँ सावन बालों में खिलती है कलियां डालों में।
1: ये जो गाना है विजयंती माला 1957 नया दौर फिल्म की उसके ऊपर फिल्माया गया था, ब्लैक एंड व्हाइट थी, रफी साहब ने कमाल कर दी, फॉर एवर ग्रीन सॉन्ग है ये। तो आइए हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, तो एक और बहुत ही बढ़िया से गाना है, लेट्स गो टू
0: भारत ने मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई तारों की भाषा भारत दिखलाई भारत तो यूं चांद जाना मिलता धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था सभ्यता जहां पहले आई सभ्यता जहां पहले आई पहले जन्मी है जब करा अपना भारत वो भारत है नीचे संसार चला संसार चला और बढ़ा जो आगे बढ़ा बढ़ता ही गया भगवान करे ये और बढ़े बसंती

एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में और मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा। तो अब आपके लिए

ना तो एक बार फिर से आपका स्वागत है कटरा में। आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत सारी शुभकामनाएं, और हम प्रे करते हैं कि हमारे भारत की लोग और हमारा भारत दुनिया में आगे आगे जरूर बढ़े और आसमान को छूने वाली अगर किया करे। हमारे देश के जो ऐसा होता है कि हम जब कहते हैं कि हमारा भारत हमारा वही है जो भारत के लोग हैं। अब भारत के लोग जो है दुनिया भर में सभी जगह पे अपना नाम कितना बड़ा रोशन कर रहे हैं, बड़ी बड़ी जॉब कर रहे हैं, जितने डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बहुत ही हाईली बड़े बड़े रिसर्चर्स हैं, बड़े बड़े क्वालिफाइड लोग हैं, हम उनको सलाम करते हैं। वही है हमारा भारत, समझ लीजिए। तो इसी विचार के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। रात को भी हम 10 से 11 बजे आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे और इसी तरह इंडिपेंडेंस डे को मनाते रहेंगे। और मेरे वतन के लोग अगर ये गाना लता जी का नाम बल्ले करेंगे तो इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन अभी भी रहती है। तो नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी शुरुआत का पला। एंजॉय दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग।

मेरा काज करे मेरा सतगुरु मैनू चिंतना कोई करने हारा करदा आपे जो होना सो होए। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ संतोष कौर ते तुहाडा सारिआं दा स्वागत करदी हाँ तुहाडे ही अपने प्यारे जिहे शो रेडियो आवाज़ ते।

0: जल्दी पहुंचो 30 रैम्बलर ड्राइव ब्रैम्पटन मेजर इंटरसेक्शन स्टील्स एंड कैनेडी 9054512600।
1: यार लास्ट वीकेंड असी तवा किचन तो केटरिंग ऑर्डर कीता सी। ऑनेस्टली बेस्ट डिसीजन सी। हां ब्रो, फूड वाज अमेजिंग, फ्रेश, हॉट ते फुल टेस्ट वाला। गेस्ट्स भी पूरे इंप्रेस हो गए। सर्विस भी टॉप नॉच सी। टाइम ते डिलीवरी, प्रॉपर पैकिंग ते सब कुछ ऑर्गेनाइज। मेन्यू भी बहुत फ्लेक्सिबल सी। करीज, रोटी, राइस, एवरीथिंग वाज परफेक्ट।

0: 905-671-2000.
1: फेयर डील नाल हाथ मिलाओ, अपने सुपनिया नु सच कर दिखाओ।
2: कैनेडा रेवेन्यू एजेंसी यानी कि CRA बिना किसी कोर्ट जजमेंट तो तुम्हारे बैंक अकाउंट नो सीज या फ्रीज कर सकते हैं। तुसी CRA दे कर्जे नो लीगली माफ करवा सकते हो। फॉर मोर इनफॉरमेशन कॉल DCAF
3: 905-908-2499-905-908-2499 और विजिट 411debt.ca। सम कंडीशंस अप्लाई।
4: हेलो ब्रो, किथे है तू?
5: मैं क्लाइंट नो मिलन जा रहा, सोच रहा सी टिम हॉर्टन्स च बैठ जाइए।
4: ओ यार, ये तो ओल्ड स्कूल हो गया। हुन तक क्लाइंट मीटिंग्स क्लासी होनी चाहिए ने। नजारा रेस्टोरेंट लेके जाओ ना नू। प्राइवेट बूथ्स ने, फुल प्राइवेसी मिलती है, फ्री वाईफाई ते लग्जरी एम्बियंस। बिजनेस मीटिंग भी सेट हो जाती है ते खाना भी बहुत बढ़िया।
5: ओहो, ये तो प्रॉपर प्रोफेशनल मीटिंग हो गई।
4: नजारा रेस्टोरेंट, 30 रैम्बलर ड्राइव, ब्रैम्पटन, मेजर इंटरसेक्शन स्टील्स एंड कैनेडी। हुने कॉल करो 905-451-2600, 905-451-2600।
6: 6'2" लंबे दारा सिंह जी ने अपने जीवन काल में करीब 500 मैच खेले, उसमें से एक भी मैच नहीं हारे।
7: इसी तरह तवा किचन का दारा सिंह पराठा भी हार नहीं मान रहा। चैंपियन इन पराठा मार्केट,
8: जो कि मिल रहा है 2410 एट तवा किचन, 30 रैम्बलर ड्राइव, ब्रैम्पटन, कोस टू कैनेडी एंड स्टील्स। 905-451-2600, 905-455-2600।
9: पापा पापा, सुनते क्यों नहीं, चॉकलेट लेनी है।
10: अजी सुनते हो, कहाँ गुम हो?
11: अरे महेश, अभी तक ऑफिस नहीं आए, पता नहीं मीटिंग थी। हेलो हेलो हेलो,
12: जब मैं रेडियो आवाज सुनता हूँ तब तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। बम्प टू बम्प ट्रैफिक एंड बम्प टू बम्प कॉल्स, ऐसा ही होता है जब आप सुनते हैं हर सुबह 9 to 10 मंडे टू फ्राइडे एंड सैटरडे 11 to 1 रेडियो आवाज।
13: जदों असी फूड डिलीवर करदे आं कस्टमर्स नूं तां उनां दे रिव्यूज या व्यूज अक्सर इह हुंदे ने।
14: हेलो जी, मेरा नाम है गुरप्रीत कौर, मैं तवा किचन तों कैटरिंग करवाई सी। सच मनो स्वाद ही आ गया, गरम गरम फ्रेश फूड। अगर तुसी भी कैटरिंग करवानी है तो प्लीज मैं रिकमेंड करूंगी तवा किचन नूं। इन्हां दी सर्विस एक्सीलेंट है, ताई ताई कहंदे ने टेस्ट ढाबे वर्गा ते प्रेपरेशन घर वर्गे।
15: 50 Sunnyvale Gate, Brampton, Mountnash and Boveda intersection, या विजिट करो www.tawakitchen.ca। 905-790-1699, 905-790-1699।

आगाज़ खूबसूरत सुविधा खूबसूरत लोग खूबसूरत मुल्कन सी एच एल ओ डिजिटल ए एम फ्रीकेंसी रही टोरंटो पेंसिल्वेनिया न्यूयॉर्क वाशिंगटन न्यूजर्सी तक सुन रहे हो आप सब दा हार्दिक स्वागत कर दे। उम्मीद दिन खुशगवार रहेगा, चढ़दी कला वाला निरपौ निर्वय रहेगा, मुस्कुराहट चेहरे का पाठ रोशनी रस्ते दिखावेगी, तुसी चलते रहोगे। और एक बार फिर तो जिथे पियर्सन एयरपोर्ट तो उड़ान भर चुके एयर कैनेडा इस समय हवाद विच नज़र आ रही है। ट्रैक बिजी पर मध्यम ट्रैफिक जड़ा नज़र आ रहा है, पर तुसी निकल चुके होवोंगे घरां तों कम वल्लों।

कैंटी नोट कर लो। सस्ती ग्रोसरी और हरियां ताजियां सब्जियां लई शहर दे विच इको एक नाम सत शिखामा तो इंडियन फ्रूट लैंड ते नाल ही है नदी तंदूरी ग्रिल बारले पासे जिथो तुहानू बने बने हर फूड मिलदा है नाल दी नाल रॉ मीट भी और मैरिनेट कीता मीट भी तुसीं लिया सकदे हो। अपने नेड़ली लोकेशन ते आओ 45 डस्क ड्राइव फिफ्टन फेंडर वे ब्रैम्पटन 9985 मक्वीन ड्राइव ब्रैम्पटन 1465 मेफील्ड रोड ब्रैम्पटन 33 फार्ली ड्राइव गोवा और 600 हैस्कलर रोड कैम्ब्रिज नमी खुली ब्रांच 25 सेंट्रलवुड पार्कवे कैनेडी के सेंट्रलवुड पार्कवे के नेड़े आओ। हरियां ताजियां सब्जियां और जी सस्ती ग्रोसरी वास्ते पहुंचो इंडियन फ्रूट लैंड से।

0: 32, 55, 80, 93
1: एक ही गलत काउंटिंग सिखाई जाने हो
2: काउंटिंग नहीं ए ते 32, 55, 80 ते 98 इंच दे टीवी ने
3: जो आज ही ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस तो आए ने इन्ना कोल सारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस मिलेंगे हर ब्रांड बहुत ही बढ़िया प्राइस ते
2: 32 to 98 इंच दे लेटेस्ट टीवी भी अवेलेबल ने
0: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 801 बोवे ड्राइव नियर चिंगोजी कॉल 905-450-2828 905-450-2828
4: Ladies and gentlemen, introducing from CHLO AM 530, the number one radio host in the world, Dave.

आदाब नमस्कार प्यार सत्कार दे नाल सत श्री अकाल एंड अ वेरी गुड इवनिंग गुड इवनिंग निया जी अज ता बड़ी मौसम खराब है तुसी बाहर हैगे हो तो बड़े ध्यान ना ते अगर जरूरत नहीं है तो ड्राइव ना करो सो ये सुनेहा तां करके पहले दिता कि अगर इन केस तुसी हुणे सोच रहे सी कि गड्डी चक्की है किधर चलीए तो प्लीज़ ना ड्राइव करो क्योंकि अज बहुत ज़्यादा मीह पै रहा तो विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा घट है सो इस करके स्पैशली हाईवे तो ड्राइविंग तुसी कर रहे हो तो फिर तो बहुत ज़्यादा औखा हो जाना जी सो एक बार फिर तो थानू जी आया शनिवार तुसी इंजॉय कर रहे हो वीकेंड है जी शनिवार 7:03 हो गए रेडियो अंदाज तुसी ट्यून इन कर चुके हो चलो एम 5:30 ते रेडियो अंदाज दे विच मैं थोड़ी होस्ट परम हाजिर हो चुकी हाँ मेरे वालों साडे सारे लिसनर्स नू सारे परिवारों नू बड़े अदब सत्कार दे नाल सत श्री अकाल बहुत सारा प्यार ढेर सारा सत्कार वेलकम जी एंड खुशामदीद स्वागतम

0: कुछ गलबात कुछ गीत संगीत ते बाकी थोड़ी गलबात प्रोग्राम दे विच सांझी हुंदी रहेगी रेडियो अंदाज थोड़े नाल 7:45 तक है जी ते पै नहीं साथ छड के चली तुसी भी ना साथ छड के जायो 416-233-7368 स्टूडियो से नंबर ते गलबात कर सकदे हो नेक्स्ट कॉल ते चलांगे एक साडे सुनेहा दा सी स्पोंसर देसी फ्राइड मैनिया जिथे तुसी जाके लजीज खाना खा सकदे हो अज ते ना जायो कल नूं जायो क्योंकि अज मीं बहुत पै रहा ते कल नूं तुसी जाना जी वीकेंड ते जाना वीक डेज ते जाना देसी फ्राइड मैनिया 6171 मेफील्ड रोड यूनिट नंबर 96 च लोकेटड ने अगर अजे तक तुसी इन्हां दा फूड ट्राई नहीं किया तो एक बार जरूर ट्राई करो इन्हां दे कोल स्ट्रीट फूड भी हैगा जिहदे विच नूडल बर्गरस हो गए मोमोस हो गए या फिर रैप्स तुसी ट्राई करना फ्राइज खानियां बच्चों ने ते दूसरी साइड आपां फिर खाने ते आ जाइए जी ऑथेंटिक इंडियन खाना जिहड़ा कि केटरिंग दे विच वी तुसी जरूर इन्हां दे नाल गलबात कर सकते हो ते टेक आउट करना जरूर कर सकते हो सो बहुत सारा वड्डा सारा मैन्यू बहुत लजीज खाने देसी फ्राइड मैनिया 647-534-3475 647-534-3475 647-534-3475 ते कॉल कर सकते हो जी केटरिंग दे लई वी देसी फ्राइड मैनिया नेक्स्ट कॉल है जी साडे नाल ए एच कैरियर्स हां जी सत श्री अकाल
1: सत श्री अकाल की हाल है जी
0: मैं ठीक है जी तुसी दसो किवें हो
1: मैं बहुत वधिया प्रोग्राम चल रहा जी अपना
0: बहुत शुक्रिया जी
1: नाल थोड़ा मीह खराब कर रहे बाकी काम तां लोड है
0: खराब नहीं है जी पता नहीं किथे लोड होएगी मीह दी सो ओथे पहुंच रहा है ना
1: नहीं ये तां है
0: जी जी जी
1: गाने दी फरमाइश करने जी जी
0: दसो जी दसो
1: हिंदी गाना मूवी का नाम हैगा अकेले हम अकेले तो
0: ओके ठीक है जी गाना केड़ा जी
1: गाना ओदे छेगा वा अपना आई लव माय डैडी
0: आई लव माय डैडी
1: या लव यू डैडी ये सॉन्ग होना जी सॉन्ग
0: का ठीक है जी जरूर सर्च कर लेने हुनी सर्च कर लेने जी बहुत शुक्रिया थैंक यू जी थैंक यू ड्राइव सेफ 416-233-7368 416-233-7368 416-233-7368 ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੱਭਣਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਲੱਭ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪਲੇ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਲਿਸਨਰ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ 416-233-7368 416-233-7368

धड़कते दिलों और सुनते कानों को दानिश बुखारी का एक बार फिर से मोहब्बत भरा सलाम। आज फिर लिए चलते हैं आपको सुखनवरी की दुनिया में, जिसमें आपको मुसर्रत के साथ कुछ भूली बिसरी यादों को तरोताजा करने के लिए चंद आशार के साथ साथ गजलों का भी लुत्फ मिलेगा। प्रोग्राम कहकशां। आज माने से कोई अपना नहीं रहता, देर तलक किसी आईने में कोई चेहरा नहीं रहता। बड़े लोगों से जब भी मिलना, फासला कायम रखना, दरिया जब मिले समंदर से तो फिर दरिया नहीं रहता। देर तक किसी आईने में कोई चेहरा नहीं रहता। बात आईने की चली है तो आईने में हर इंसान को बाहरी खूबसूरती तो दिखाई देती ही है, मगर अंदर की बुराइयों को भी कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसी ही गजल आपकी नज़र, आवाज़ जगजीत सिंह की।

दिलों में है इकरार तो इनकार है लपर, उस शोख की देखी है हया और तरह की। जब दर्द मेरे दिल में नहीं है और तरह का, ऐ चारा अगर क्यों है दवा और तरह की। जिक्र दर्द दिल का चलने लगा है तो ये दर्द ना तो आंखों से बाया होता है और ना ही लिखने से। हाँ, मगर जुबान कभी कभार बयां कर देती है, जैसे लता मंगेशकर ने अपनी मखमली आवाज में इस गजल को कुछ यूं कहा है।

दिया वो दर्द ओ बेदर्द तूने, दिया वो दर्द ओ बेदर्द तूने, कोई जिस दर्द का चारा नहीं है, गिला हम क्या करे तेरी जफा का, मोहब्बत में गिला होता नहीं है। बात फिर दर्द की चली है तो दर्द दिल के टूटने पर होता है, जैसे फूल को टूटने पर होता है। फूल या तो खुशी को बयां करते हैं और कुछ फूलों के रंग दर्द को। कुछ ऐसा ही अर्ज किया है गुलाम अली ने अपनी इस उमदा गजल में।